0: बिना किसी साइड इफेक्ट के।
1: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार।
0: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
1: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।
2: क्या आप भी चाहती हैं वो सुनहरी चमक जो सबको आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे? तो फिर वक्त आ गया है नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम का। ये सिर्फ एक क्रीम नहीं, ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताजगी और गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश। चाहे दफ्तर का वक्त हो या किसी पार्टी का प्लान, नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे आपको वो कॉन्फिडेंस जो सबको हैरान कर दे। और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्ड।

तस्वीर में वो सेजा ऐसा पुशान बेनंगा ऐसा तस्वीर में वो सेजा तस्वीर दीचे सेजन दागो तेले वाले रपे दे दे स्तरगुन दे ब्रागे ब्रागे उख के वाले रात ले तस्वीर द सेजलो नपस्ते दागी इरे वाले संभाल करे

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरिया। हमारे साथ रहिएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: तो बिल्कुल जनाब 0309-711-8899। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम निशान भाई, कैसे हैं आप?
0: खैर दी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो को द कुम जेना
1: जाहिद खबर को निशान हूं।
0: जाहिद से प्रोग्राम कर कले वो ऐता सुखे
1: तेरे मेहरबानी जी, बेगा होका सुनो।
0: बिल्कुल बेगा नजीर से बोनो कल कल दासी खवी का ना मेलमा रागले उमंग वायु ची मेलमा तांसुर गप शपु लगी नो खवी दासी मजाव की कल कल खैर दे शुक्र दे सिफात कॉस्मेटिक रागली दी आओ इंशाल्लाह इस्तेमाल हुए का ना
1: इंशाल्लाह।
0: अगस्त दी माशाल्लाह भी खुता सुखे तीज ये हा माशाल्लाह। और ता सुन तपूस कुम पो दुनिया की द टूल ने तेज शीशे दे आओ
1: पर
0: समझ के नाजी डेरा मन न कुम छा दवा सलाम ले गए वालेकुम सलाम डेरा मन न मीना वालो समझ के रावल है खाना बादाम खुरे गुजान खुरे खर्ची खोए आओ खाना कुर्बानी को वाली

सलाम मामू, आप कैसे हो? अक्सा जानी मानू दुरानी, अलीश पानूर, मायरा शिराजी हंसा, सोनिया बरीदा, इनको सलाम मारिया जी, बहुत शुक्रिया। दुनिया के टूलू 29 ए आईदा नन सबा सिद गनी हर मसला दला हलकई जते हर तपुसुना कोमा हसीन अरमान।